हिकमत जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करेगा वह मंगे मुख दो बार, जती सदा वह जुगत जाने छड़ बह घर बार।

भया बिन मिलत प्यारे राम, बिन मिलत प्रभु नू मिलन तो बिना तन कमजोर हो गया। हुण आ हालत जदों

हे वाहिगुरु जी, खोजत संत फिरें प्रभ प्राण आधारे, राम तान तन खीन पया। मैं इदा लगता जिमें किसी के शरीर विच जान ना ना रवे, शरीर कमजोर हो जाए, तो वह इंसान कहिंदा भी मैं तो मरियां दे बराबर हाँ, मैं तो ना मेरे को उठ होवे ना बैठ होवे ना तुर होवे, कादी जिंदगी है, मैं तो मरियां दे बराबर हाँ। पर जे किते उनू एनर्जी मिल जाए, पावर मिल जाए, फिर उहदे विच मुर्दे विच जान पै जांदी है। वी मैं तो अपने आप नू मरिया समझदा सी, पर ये मेरे विच जान पै गई, मैं फिर उठ के तुर पिया। ये जिहड़ा नाम है ना, नाम परमेश्वर दा, ये साडे वास्ते वो पावर है जिन्हें सानू मोया नू भी जिउंदा करके तोर देना। शरीर दी गल नहीं हो रही, शरीर दा ते इक्को वारी जन्म होना, इक्को वारी मौत होनी है, गल इत्थे हो रही है जमीर दी, आत्मक तल ते। हे वाहिगुरु जी, पहला तो दया करके लड़ लाए लीजिए, अपने चरनी ला लो, फिर चरनी ला के एक होर किरपा कर देना, दे नाम अपना, अपना नाम भी मैनू देना, क्योंकि वो नाम ही मेरे वास्ते एनर्जी है, पावर है, ताकत है, तेरा नाम ही मेरे वास्ते ताकत है, इहदे सहारे ही मैं जी सकदा। नाम तो बगैर मेरी कादी जिंदगी है, मैं ते मोयां दे बराबर हाँ। इसलिए दे नाम अपना जपो स्वामी, हे स्वामी जी मैं तेरा नाम जपा और जप के तेरा दीदार कर सकां, और जदों तेरा दीदार होवे ते मैनू इदा लगे भी जिमें मुर्दे विच जान पै गई, ते मैं मोया होया फिर जीवत हो गया, मैनू जीवन दान मिल गया। ऐसा नाम दे दियो कि आखा जीवा विसरे मर जाओ। जे नाम जपदा तो मैं जिउंदा, तो जे विसरदा तो मैं मरदा। नाम तो बगैर जड़ा वो मेरा जीवन किसे काम दा नहीं है। बोतियां दी हालत ऐसी अज हो चुकी है कि सवेरे उठदियां सार पहला दवाई खानी पैंदी है, तां मंजे तो उतरिया जांदा है। बहुत ने ऐसे जिहड़े अपने मूहों कहिंदे आ वी जे असीं सवेरे उठदे आ ना, ते उठदे आ सार जिन्ना चिर दवाई ना खाईए, मंजे तो पैर जमीन ते नहीं रखिया जांदा, ते ना ही असीं सारी दिहाड़ी तुर फिर सकदे आ, उठदे आ दवाई लैणी पैणी है। इसे तरह आदि नाम भी एक साडी खुराक है, ये सर्व रोग का औखद नाम है। अमृत वेले इसे लिए महाराज ने कहा, तू अमृत वेले नित नेम अपना कर, ताकि तेनू एनर्जी मिले, पावर मिले, तू सारा दिन तुरिया फिरदा रवे। तेरे मन एक हुंदा शरीर दा आलस, एक हुंदा मन दा आलस, एक हुंदा शरीर दा सौना, एक हुंदा मन दा सौना। ये मन दी हालत कमजोर नहीं होनी चाहीदी। इस वास्ते वाहिगुरु जी मैनू अपना नाम भी दियो, और नाम मैं जप भी सकां। हर दर्श पेखे जी जी है मैं जी सकां, मैं जिउंदा रह सकां। ये ना होवे कि दुनिया की नज़र विच मैं जिउंदा ते तुहाडी नज़र विच मुरदा हाँ, क्योंकि जिहड़े दुनिया की नज़र विच जिउंदे आ ना, वह वाहिगुरु की नज़र च मुरदे आ, ते जिहड़े दुनिया की नज़र विच मुरदे आ वो वाहिगुरु की नज़र विच जिउंदे आ, क्योंकि मुरदा हो के मुरीद होया जाणा, अपना आपा मार के मुरदा होए मुरीद ना गली होवना। इत्थे शब्द विच अपने आप नू मार के जिउणा है, ऐसा जिउणा है कि दोबारा कोई मार ही नहीं सकदा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, ता फिर मरण ना होई। ऐसा शब्द विच सानू जीवन मिलना है, ता फिर मरण ना होई, फिर उत्थे आत्मक मौत नहीं होनी, उत्थे जमीर नहीं मरेगी, इंसानियत नहीं मरेगी। वो वाला जी जी है, वो वाला जीवना है।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੌਰੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਐ, ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਔਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜਪੋ ਸਵਾਮੀ, ਹਰ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਜੀ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਕ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜੋ।

दोहरा गया भैया काल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो

नानक नावें बासनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखां बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के बड़ भाग बड़ेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलें त्रिपता सही मिल संगत गुण प्रगास जना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जना हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितवहे उद्दम जा आहर हर जियो प्रया सैल पत्थर में जनते उपाए ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत महिता कोई ना किसकी तरिया सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पौ करया ऊड़े ऊड़ आवे सैकों सां तिस पाछे बचरे छरया

सदबल जाइए तेरा अंत ना पर ब्रया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्या वहीं सब त्या वहीं तुद जी हर सच्चे से

नाक वखाण जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाण हरते आवहे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैनो हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिनका भौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक करें हर पूजा जी तपतापहि जपहि बयंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमर शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अबर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरे सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सत्यार मेंडा साई जो तो भावे सोई थिसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमहला दा मन मुगवाया तुदया बिछोड़या आ मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माहें

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसमी कबियो बाच बेनती चौपाई।

हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवय तुम खावो, आप हाथ दे मुहि बचावो हो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवे करतारा। मोर अच्छा निज करते करिए, सवेरन को आय संगरिए।

सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शत्र हमारे मारिये, आप आद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए।

काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जौन काल जोगी शिव गियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। जौन काल सब लोक सवारा, नमस्कार हैं तहें हमारा। जौन काल सब जगत बनायो, देव दैन जक्षण उपजायो। आद्यंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को शिवगण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो। कड़गड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्ने, कड़ कड़ के पढ़ पढ़ की जन्ने। जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तर्त तव देह अपारा। जब आकर्क करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारे, आप अपनी बोझ विचारे। तुम सब हीते रहत नरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

पिता जाको पीव ना पावत बेता ताको कृपाण अनुमानत मां मूड़ कछे भेद ना जानत। महादेव को कह सदा शिव रंकार का चीनत नह भिव आप आपनी बद है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा ना जय पसारा केह विध सजा प्रथम संसारा इक्कै रूपे अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंडज रसे तजकीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहों फूल राजा हवे बैठा कहों सिमड भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आजुगा स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे आसित हुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवाए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे।

कर्म सब होई दुष्ट सहा शवय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा कल फांसते ताहे ओ भरा।

आधारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे

पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्हद तुरे।

तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिले।

जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा आत्म जने सकल वस्ता के, जाका सतगुरु पूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम त्यावन सह समावन संग, जनके चरण वसे मेरे ही अरे संग पनीता देही, जन की धूर देहो कृपा निद नानक कै सुख एही। पहला मरण कबूल जीवन की छड़यास, हो सवना की रेनुका तो आओ हमारे पास, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर त्री जय सिर दी जय कान ना की जय। सतगुर आगे सीस भेट दियो जे सतगुर साचे भावे, आपे दया करो प्रभदाते नानक अंक समावे। सूरा सोपे चानिए जो लरे दीन के हे, प्रजा प्रजा कट मरे कबहू ना छड़े खेत, गगन दमामा बाजियो प्रयो निशाने काओ, खेत ज्यो मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ। सो कहो टल गुर से भी है आहिने सह सुपाए, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए, हो वै सिवत खसम मंदी नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो, जिस पास बैठे सोही है सबना दा वैसाहो। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो, जिस पास बैठिया सोही है सवरां दा वैसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, तनासरी महला तीजा घर दूजा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एहो धन अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सदबल जाई, गुर किरपा ते हर मन वसाई, एहो धन अखुट नान खुटै ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सदबल जाई, गुर किरपा ते हर मन वसाई। से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुरपुरे हर धन प्रगासिया, हर कृपा ते वसे मन आए, रहाओ अवगुण कार गुण हृदय समाए,
ऊरे गुर कै सहज सुपाए, पूरे गुर की साची बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी। एक आचार्य जन देखो पाई, दोदा मार हर मन वसाई। नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद बसे मन आए। सब में बसे प्रभ एको सोए, गुरमती घट प्रगट होए। सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मन्या। सब में वसे प्रभ एको सोए, गुरमती घट प्रगट होए। सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मन्या। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

इतनी सेवा प्रवान करनी। धनवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का, सारे ही प्रबंधक वीर मुख सेवादार सरदार प्रतपाल सिंह जी, इन्हां दी सारी ही टीम जो बहुत प्यार सत्कार दे नाल गुरमत समागमां दे उपराले करदे रहिंदे हन। सारिया ही संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां दे उपराले सदका सतगुरां ने समय बख्शिश कीते, आपां रल मिल के यतन किया है सतगुरां दी गोद विच बैठ के सतगुरां दी बाणी दे नाल इस मन नूं जोड़न दा। सतगुरु सारिआं दी हाजरी तन मन धन करके प्रवान करन। बहुत सारे शब्दां दे हुकम गुरु प्यार वालियां संगतां वल्लों होए सन, कुछ पढ़े गए कुछ रह गए, माफ़ी चाहुंदे हाँ। फिर समा बणिआ तो जरूर सरवण करावांगे। सतगुरां दी बाणी दा कीर्तन करदिआं बेअंत भुल्ला हो जांदियां ने। गुरु प्रसाद समर्थ हो बख्शण विभुख हो बख्श लैणा। सारे गुरु सीसां सहित फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं।

अचल अबनासी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कमल रिद तारंग, गुर अर्जुन गुण सहज विचारंग, गुर रामदास कर कियो परगासा।

जान्यो भगत जोत को जैतवार हर जनक उपायो शब्द गुरु पर कास्यो हर रसन बसायो गुरु नानक आद अंग गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जुन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दिड़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जुन कर गुर रामदास अनपो ठहरायो जनक राज बरताया सतजुग आलीना गुर शब्द मन मानिया अपतीज पतीना गुरु नानक सच नीव साज सतगुर संग लीना गुर अर्जुन कर गुर रामदास अपरंपर बीना खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरयो बिमल बुद्ध सतगुर समानो आजोनी संभवयो सो जस कल कवियन बखाण्यो गुरु नानक अंगद वरयो गुर

अगत उदरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लख्या न जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुरज।

मन इच्छत ही फल पावत है, रब के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है।

0: ताते संगत सगण पाए पौ माने तुम मलियागर प्रगट सुबास ध्रुव प्रहलाद कबीर तिलोचन नाम लैत उपजो जो परगास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास
1: समरथ गुरु सिर हथ तरियो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो निस बासर ए

आज भगत प्रहलाद की हर नाख शफारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी है हर प्रभ जी छीनत वस्त्र दीन बोसाज सोदामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे ते काज श्री सतगुरु सो पर सन कल जुग होए राखो दास पाठ की लाज सेवक कै भरपूर जुग जुग वहा गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके को तू कदका ब्रह्मा विष्ण सिरे ते अगनत तिनको मोह पया मन मद का 84 लख जून उपाई रिजक दिया सबहू को तदका सेवक के भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका।